0: डार्लिंग आज बहुत काम है।
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening to you।
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: I'm not listening to you।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: Okay, I'm not with her।
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: Okay, that's it।
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM।

106.3 FM Gio Bendaz. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
3: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
4: कॉल 7022525।
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
3: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेतु। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने। जनाब खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर ऑफर।
3: ओह नो, फिर से स्कूल।
4: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताबें

0: हाय गाइस, इज अबाउट शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिंपिक।
1: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय गाइस, दिस इज जुरिता गांधी। रेडियो ऑलिव, आई एम नंबर 1। यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास। रेडियो
2: ऑलिव, आई एम नंबर 1। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेक्युलर ऑफर।
2: ओ नो, फिर से स्कूल।
1: अरे समर वेकेशन खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
3: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
4: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है, ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
3: हाय, मैं राजकुमार राव।
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
5: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, दिस इज एयर अमान। एयर अमान, लिसन टू माय सॉन्ग्स ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो पालर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: ओह नो, फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daisu Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center. Shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.

Listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive, Gio,

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबेरॉय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव, जियो बिंदास।
5: ओलिव सुनो, रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबूसिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबूसिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alcor.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने?
1: जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
2: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
3: हाय, मैं हूं सुहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
4: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर
4: ओह नो, फिर से स्कूल।
5: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है।
6: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
7: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
6: एंड
7: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
6: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
7: कॉल 7022525।
6: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
8: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
6: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alcohol.
4: Hi, I'm Dibya Datta, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
5: Olive Sonor Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

क्या बात है बाबू मुशाए, आज तो आप वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक दिन और स्पेशल है आज। आज है आपकी कसूस का हैप्पी वाला बर्थडे। यस, ये बोलते हुए मुझे शो की शुरुआत करनी थी, ये दिखाना था कि यार देखो मेरा बर्थडे कितना इम्पोर्टेंट है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बातचीत होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। और आज का दिन और ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है आज। तो आज मैं कुछ एक्स्ट्रा अच्छी बातें जो है वो करने की कोशिश करूंगी और ज्यादा आपको यू नो टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी, लेकिन थोड़े एक्स्ट्रा तड़के के साथ, क्योंकि बर्थडे की ट्रीट तो देखो मेरी तरफ से बनती है ना। बाकी हैप्पी वाला बर्थडे अगर आप कह दो कि मुझे इंस्टाग्राम पर आकर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आरजे कशिश के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी, रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर भी आप मुझे विश कर सकते हैं। तो जल्दी से, देरी किस बात की है, मुझे जल्दी से हैप्पी वाला बर्थडे विश कर दो। बाकी एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए, उसके बाद जरा आज की बातचीत जो है वो जारी रखेंगे द टेक शो पे। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड रहो एंड मेरे साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: खत्म, पैसा हजम।
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲਵ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
5: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
6: TACX

लाइफ में इतने सारे काम होते हैं ना जो हमें लगता है कि यार काश अगर ये कोई रोबोट कर पाता तो कितना मजा आता, लेकिन जेन्युइनली दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम है जो इंसानों को शायद नहीं करने चाहिए एंड वो जान पे ऐसे खेल के वो काम करते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए द टेक शो लेकर आ गई हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए सबसे खतरनाक एक काम अगर मैं बताऊँ जो मुझे पता है वो ये है इलेक्ट्रिक जो वायर्स होती हैं उन्हें यू नो चेंज करना या पोल्स पे जो है वायर्स लगाना, ये काफ़ी खतरनाक काम होता है। एंड अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, रोबोट्स इतने एडवांस आ चुके हैं एंड अब स्पेशली यूज जो है उनका ऑफिशियली शुरू हो गया है जहां पर अब जरूरत नहीं पड़ेगी एक इंसान को पोल पे चढ़कर वो इलेक्ट्रिक यानी जो बिजली के तार होते हैं उन्हें ठीक करने के, रोबोट जो है प्रिसाइसली ये काम कर सकते हैं। एंड चाइना में जो है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज में भी शुरू होने वाला है। तो देखो यार जब टेक्नोलॉजी से किसी की जान बचती है ना एंड खतरा कम होता है तो मुझे अच्छा लगता है, वरना तो हम AI पे जो है चप्पलें ढूंढ रहे हैं घर के सामने अपनी। Yes, इस घूमी हुई चप्पल का क्या केस है ये भी बताऊंगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड रहिए आप आपकी कशिश के साथ एंड अमेजिंग गाने एंजॉय करते रहिए, कहते रहिए जियो।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलिट योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

कभी आपको उस इरिटेशन का एहसास हुआ है जब आप कोई सीरीज जो है वो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, रील देख रहे हो, एंड आपको उस सीरीज ऑफ रील्स का नेक्स्ट पार्ट मिले ही ना? मतलब जो क्लाइमेक्स है वो अगली रील में है, लेकिन वो आप क्रिएटर के पेज पर जाके ढूंढ चुके हो, लेकिन आपको वो अगली रील जो है वो मिल ही नहीं रही है। अब इंस्टाग्राम ने आपके इस इरिटेशन का जो है इलाज निकाल लिया। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कसूस, आपके लिए द टेक शो लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ। अब देखो, अगर मैं बात करूँ ना, ऐसी जो सीरीज है वो आजकल काफी इन ट्रेंड है। मतलब हर क्रिएटर एक सीरीज बना रहा है जिसमें जो है अलग अलग एपिसोड में, अलग अलग रील में जो है एक ही स्टोरी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। लेकिन इस स्टोरी लाइन का जो है प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमें अक्सर वो जो एक हमें रील देखनी है, जो पार्ट देखना है, वो मिलता ही नहीं है। सो अब यू नो रीअरेंज का फीचर तो दे ही दिया इंस्टाग्राम ने, लेकिन अब क्रिएटर्स जो है वो सीरीज के पैनल्स बना पाएंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी सीरीज देखने में। अगर आप क्रिएटर हैं तो आप इस टूल का यूज करके अपनी ऑडियंस को जो है एक पूरी स्टोरी लाइन एक गो में दे सकते हैं। यानी अगर किसी ने फर्स्ट एपिसोड देखा है तो उसको ऑटोमेटिकली स्क्रोल करने के बाद सेकेंड एपिसोड मिल जाएगा अगर वो चाहता है तो। सो इंस्टाग्राम ऐसे क्रिएटिव चीजें कर रहा है, दैट्स नाइस। हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे जो है वो नज़र रखे हुए है, ध्यान दे रहा है, इतना ध्यान तो जिससे उम्मीद है वो भी नहीं दे रहा है हमारी बातों पे, लेकिन इंस्टाग्राम दे रहा है, अच्छी बात है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, टेक की और बातचीत जारी रखेंगे। स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: TECA

अभी वो इंसान है जो हर अच्छे ओकेशन पर चश्मा पहनना जो है इग्नोर नहीं कर सकते. आपकी सारी फोटोज में आपका चश्मा जो है आपके लुक को खराब कर देता है. आज हुआ है मेरे साथ. पूरी ऊपर से लेकिन नीचे तक फुल ऑन तैयार थी मैं, लेकिन मेरा जो चश्मा था वो मेरा फुल लुक खराब कर रहा था. मेरा बर्थडे जो है वो मेरे चश्मे की वजह से थोड़ा सा कम अच्छा रहा, थोड़ा फीका रह गया, बिकॉज मेरे आउटफिट के साथ मेरा चश्मा मैच नहीं कर रहा था. एंड यार चश्मा बहुत महंगा आता है, आप उसे हर आउटफिट के साथ मैच नहीं कर सकते, यही सच्चाई है. वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिवर. मैं हूं आपकी कसर शो, आपके लिए ले आई हूं द टेक शो, जहां पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, लेकिन मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ. और अगर आप भी वो हैं इंसान है जिन्हें जो है दिखाई थोड़ा सा कम देता है, जिनकी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है, एंड आप ना ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे थे कि यार जिससे ना हमारी आंखें ठीक हो जाएं, या जिन्हें बिल्कुल ही नहीं दिखता है उनके लिए हम सोच रहे थे कि यार कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, तो एलोन मस्क जी का ऐसा कहना है कि कुछ सालों में, यानी एक आध साल में जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी वो ले आएंगे जिससे जिनको दिखता नहीं उन्हें दिखने लग जाएगा. अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, बिकॉज टेक कंपनी आए दिन ऐसे दावे जो है वो करती रहती है. अब कितने दावों को आप सच मानोगे, लेकिन अगर ये आ गया सो एक ये रिवोल्यूशनरी एक बहुत बड़ी चीज होगी एंड बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी. स्पेशली मुझे जो है कम दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं दिखता है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बिल्कुल ही ना दिखने की वजह से कितनी टफ हो गई है, वो कितनी आसान हो जाएगी, है ना. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

यार अभी कुछ टाइम पहले ना वो चिप्स काफी वायरल हो रहे थे जिनका टेस्ट काफी खराब था एंड लोग अपने दोस्तों को चैलेंज दे रहे थे कि यार ये गंदे टेस्ट वाले जो चिप्स हैं इन्हें खा के दिखाओ तो माने एंड इस वजह से उस चिप्स कंपनी की जो है सेल काफी बढ़ गई थी। ऐसा ही हुआ है चाइना की एक मूवी के साथ भी, ये इतनी खराब है कि इस वजह से वो बॉक्स ऑफिस पे जो है हिट चली गई है ये मूवी। टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार चाइना की एक ऐसी मूवी है, एनिमेटेड मूवी है जो इतनी खराब है और इतनी फनी है, इतनी ब्रेन रॉट है, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी नए नवेले एनिमेशन सीखने वाले बच्चे ने जस्ट ऐसे ही बना दी है। और ये मूवी थिएटर्स में रिलीज करी गई एंड लोग क्योंकि इतनी खराब है उनको जो है इसलिए हंसी आ रही है, बस इसीलिए देखने के लिए चले गए। और ये देखो ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ चाइना में अभी ऐसे न्यूज में आया है। हमारे यहाँ अभी वेलकम टू द जंगल जो है वो भी इसी वजह से जो है उसने इतने पैसे कमाए थे क्योंकि वो जो मूवी है वो मूवी इतनी ब्रेन रॉट है कि लोगों को मजा आता है। यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। सो लोगों को आजकल ब्रेन रॉट कंटेंट भी इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोच सोच के अपना दिमाग खराब करते रहते हो, तो कई बार आपको जो है एक पॉज बटन की जरूरत होती है और ये मूवीज जो है कुछ वैसा ही कर रही है। मैं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: तेरे पीछे बावरा समन बावरा समन।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
4: गुलराज सिंह
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
4: जियो बिंदास।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: KEC

आप अभी तक आइसक्रीम में ही अपना फेवरेट फ्लेवर जो है वो चूज कर रहे हो और दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि ऑक्सीजन का फ्लेवर जो है वो टेस्ट कर रही है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश और द टेक शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब मुझे नहीं पता कि इसको हम टेक में जो है कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक नया इनोवेशन किया गया है जहाँ पर ऑक्सीजन को जो है फ्लेवर्ड करके आपको दिया जा रहा है एंड अच्छे खासे जो है इसमें मनी आपको लग जाएगा, देनी पड़ जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग फ्लेवर की जैसे जामुन, ऑरेंज, ऊद, इस फ्लेवर की ऑक्सीजन जो है वो दी जाएगी। अरोमा थेरेपी का इसको एज अ पार्ट जो है वो कहा जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई ये क्या है। इतनी सारी मशीन्स मैं अपने मुंह पे लगाऊं ऑक्सीजन के लिए, मतलब अगर मैं जो है अपने फेस पे अगर फेस पैक भी लगाती हूँ ना तो भी मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी ने मेरा फेस जगड़ के रखा है, मुझे सांस नहीं आती है, मुझे से क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइप होने लग जाता है। एंड आप बोल रहे हो कि आप मेरे मुंह पे एक पूरा मास्क लगाने वाले हो ऑक्सीजन के लिए, वो भी फ्लेवर्ड ऑक्सीजन के लिए, जो कि मैं जनरली ऐसे ही खुले में अवेलेबल है और मैं उसके लिए पैसे दूं। वाओ, वाह क्या बात है, इस टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल भी नहीं करना था। आप बताइए आप क्या इस फ्लेवर्ड ऑक्सीजन को चखना तो नहीं सूंघना चाहेंगे? 3311063 इज द नंबर, आइए बताइए। फिलहाल अमेजिंग गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए एंड मुझे हैप्पी बर्थडे कह दीजिए। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होना भी नुकसानदायक हो जाता है, जो एप्पल के साथ हुआ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑरिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश और द टेक शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, 2015-16 में ना एप्पल ने एक नया बटरफ्लाई कीबोर्ड डिजाइन जो है वो लॉन्च किया था, जो काफी पतला था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर एक छोटा सा भी धूल का एक तिनका भी या डस्ट पार्टिकल कोई भी किसी की के अंदर चला गया तो पूरी कीज जो है वो जैम हो जाती थी और काम करना बंद कर देती थी। सो इसी वजह से जो है ये जो एक नया इनोवेशन था इसे बंद करना पड़ गया। असल में ये जो मेम्ब्रेन था ये एक शील्ड की तरह जो है काम करता था, ताकि धूल कीज के अंदर ना जा पाए एंड स्विच तक ना पहुंच सके। ये जुगाड़ भी काम नहीं आया। सो धूल इतनी बारीक होती है कि वो सिलिकॉन बैरियर के अंदर भी चली जाती थी। सो इस कीबोर्ड पर एक कवर जो लगाया गया वो भी वर्क नहीं करता था, क्योंकि आप देखिए, आपने अगर थिन कीबोर्ड बनाया है तो अगर आप उसमें एक मोटी सी लेयर लगा देंगे फिर वो थिन कहाँ रह पाएगा। इसीलिए ये जो कीबोर्ड है ना, उस कीबोर्ड का के ऊपर वाला सिलिकॉन कवर जो था, जो कीज को प्रोटेक्ट करने के लिए था, ये दोनों ही बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए। कोई बात नहीं, हो सकता है वो सही टाइम ना हो, अब इसका सही टाइम हो जहाँ पर हम बिना धूल के रह रहे हों, मे बी हो सकता है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले

क्या देखो, आप लोगों को चाचा बाय बाय करके जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन जाना पड़ेगा, तभी तो कल वक्त पे आ पाऊंगी मैं शो लाइफ मस्त है लेकर। मैं हूँ आपकी कजन शो, आप मेरे साथ द टेक शो एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर मस्ती मजे के तड़के के साथ टेक्नोलॉजी की थोड़ी बातचीत हम करते हैं। लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट तो करूँगी ना यार मैं। आई नो आप लोगों के साथ मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि बर्थडे भी सेलिब्रेट करूँ। जाके इंस्टाग्राम पे आप मेरे बर्थडे की फोटोज देख लेना, लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, और बाकी मुझे हैप्पी बर्थडे अगर अभी तक विश नहीं किया है तो करो ना यार, किसका वेट कर रहे हो। बाकी मैं चलती हूँ, मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है वाले शो पर। फिलहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपकी कसूस, मेरे साथ एंजॉय करते रहो और कहते रहो जियो बिंदास टाटा बाय बाय टेक केयर।

आपकी छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

गुड इवनिंग, फ्राइडे आ गया है कतर, और फ्राइडे का नाम सुनते ही ना बॉडी के अंदर एक अजीब से एनर्जी आ जाती है। कल शाम को ही, मतलब थर्सडे की शाम को ही हम कहना स्टार्ट कर देते हैं बस कल फ्राइडे है, और फ्राइडे को भाई अब लाइफ जीनी है। ऑफिस का लैपटॉप बंद हो जाता है, अलार्म को वीकेंड की छुट्टी मिल जाती है, और दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि आज क्या करें। कुछ लोगों का प्लान ना ऑलरेडी फिक्स्ड है, कुछ लोग फैमिली के साथ निकालेंगे, कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ डिनर करने जाएंगे, और कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो मेरे जैसी हैं, प्लान भाई देखेंगे। और बिलीव मी, ये जो देखेंगे वाले लोग हैं ना, ये कभी भी मतलब कुछ भी प्लान कर लेते हैं, मतलब सबसे डेंजरस लोग यही हैं। सो वॉट एवर यू आर इन कतर और वेर एवर यू आर इन कतर, जो भी कर रहे हो, मेक दिस वीकेंड अ लिटिल लाइटर, लिटिल हैप्पियर। और मुझे ये बताइए कि आपका वीकेंड प्लान फिक्स्ड है या फिर आप भी देखेंगे वाली गैंग में आते हो। बाय द वे, कभी कभी ना मुझे देखेंगे से खुद इरिटेशन होने लग जाती है। मुझे लगता है कि नहीं यार, दो तो दिन मिले हैं, फ्राइडे सैटरडे शुड बी यू नो वेरी स्पेशल, वेरी यू नो प्रोडक्टिव। पर कभी कभी लगता है कि क्यों हर चीज़ को, हर टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है। सो दोनों तरह का दिमाग में चलता है। बाय द वे, आप मुझे बताइए आप कौन सी गैंग में आते हैं। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Geo Bindas.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

ओके कतर, एक प्रैक्टिकल अपडेट, और ये वो वाला अपडेट है जो आपको तब नहीं चाहिए जब आप ऑलरेडी रोड पर हो। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीगन्स। क्या जबरदस्त गाने चल रहे हैं यार। हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि रुमेला हॉस्पिटल के सामने और सराउंडिंग पार्किंग एरिया के कुछ रोड्स जो हैं वो टेम्परली क्लोज्ड हैं 15th ऑफ सेप्टेम्बर तक। रीजन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, कुछ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। सो अगर आपको उस तरफ जाना है तो स्पेशली अपॉइंटमेंट या किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम रखिएगा या ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो चेक करके ही निकलेगा। और ऑनेस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क थोड़ा सा इनकन्वीनियंट ज़रूर होता है, लेकिन सोचिए आज थोड़ा सा डाइवर्जन और कल बेटर ड्रेनेज। सो आई विल से कि कभी कभी 5 मिनट डी रूट का जो बेनिफिट है वो 5 साल तक और 50 साल तक मिलता है। सो फ्राइडे रिमाइंडर ये है कि गूगल मैप को दोस्त समझिए, मतलब उसको और प्यार से समझिए। और अगर आपको रिसेंटली कतर में कोई रोड डाइवर्जन मिला है जो अनएक्सपेक्टेडली कंफ्यूजिंग था और आपको लगा कि यार ये तो बहुत ही लंबा पड़ गया, सो टेल मी योर स्टोरी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, नंबर है 3311106।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। रेडियो

अब स्पोर्ट्स लवर थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लीजिए। दोहा में इस वक्त दुनिया के कुछ यंगेस्ट वॉलीबॉल टैलेंट एक जगह पर कलेक्ट हुए हैं। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड। द FIVB वॉलीबॉल बॉयज अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 इज हैपनिंग इन दोहा फ्रॉम 19th टू 29th ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 24 टीम है, 5 कॉन्टिनेंटल है और 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैचेस जो हैं वो हो रहे हैं यहाँ पर अल अरबी स्पोर्ट्स हॉल और स्पायर लेडीज हॉल में। सो और कतर के लिए ये स्पेशल है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दोहा विच मतलब होस्टिंग वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर नेशनल टीम्स ऑफ एनी जेंडर और एज कैटेगरी। इमेजिन कीजिए ये प्लेयर्स जो हैं 16-17 साल के हैं और मतलब अंडर 17 है क्योंकि ये मे बी कल इनमें से कोई ओलंपिक चैंपियन होगा, मे बी कोई इंटरनेशनल सुपरस्टार होगा और हम कहेंगे अरे इसको तो हमने दोहा में अंडर 17 में खेलते हुए देखा था। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स यार, यू डोंट जस्ट वॉच अ मैच, समटाइम्स you just you know watch the beginning of something you know somebody's story. So Qatar, ek question aapse hai ki volleyball, football, basketball agar aapko ek sport you know Qatar mein aur zyada popular banana ho to aap kaun sa banana chahoge? Sun rahe hain aap Radio Olive, number hai 3311 1063. Stay tuned, Jio Bindas.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

अगस्त भी खत्म होने को है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगस्त का एक इंटरेस्टिंग सीन है कतर में। एयरपोर्ट पे एक तरफ लोग आ रहे हैं और 3 सूटकेस, 2 हैंडबैग्स एंड 14 शॉपिंग बैग्स, और दूसरी तरफ फैमिली खड़ी है। बेटा आ गया, ठीक है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को रिटर्निंग ट्रैवलर्स के लिए एक अराइवल गाइड शेयर किया था ऑलमोस्ट 3 दिन पहले, क्योंकि अगस्त इज द वन ऑफ द यू नो बिजिएस्ट अराइवल पीरियड एज फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स रिटर्न फ्रॉम समर हॉलीडेज। और आपको तो पता है बैक टू स्कूल भी चालू हो गया, और एयरपोर्ट से सिटी जाना भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऊबर, कारवा, टैक्सीज, बसेज, मेट्रो, सब कुछ है। सो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गाइड के अकॉर्डिंग दोहा मेट्रो के लिए टर्मिनल से इंडोर कनेक्शन अवेलेबल है, और लगेज के लिए भी एक सिंपल बट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है, बेल्ट पर बैग उठाया और भाग मत जाना, बैग टैग चेक कर लेना। ब्लैक सूटकेस दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ लोगों का फेवरेट कलर है। सो अगर आपको वो कन्फ्यूजन नहीं चाहिए कि बैग मेरा है या नहीं, प्लीज़ एक बार टैग चेक कर लो, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पर। सो एयरपोर्ट से घर आते वक्त आपका फर्स्ट स्टॉप क्या होता है? होम, एक कड़क चाय, या सीधा यू नो घर पे आके फ्रिज चेक करते हो आप? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

कभी कभी ना किसी जगह की खूबसूरती ना उसकी बिल्डिंग्स में नहीं होती, उसकी एक्सेसिबिलिटी में होती है। ओल्ड दोहा पोर्ट ने विजिटर्स के लिए सेवरल एक्सेसिबिलिटी फोकस्ड फैसिलिटीज जो हैं वो हाइलाइट की हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। सो वहां पर स्टेप फ्री रैंप्स हैं, एक्सेसिबल पाथवेज हैं, क्लोजर पार्किंग है, यहाँ वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ कार्ट हैं जो कि सर्विस देते हैं आपको की एरिया से लेके वैले पार्किंग तक। और ये सुनने में ना बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन इमेजिन करो एक मतलब कोई इंसान है जो अपने पेरेंट्स को घुमाने के लिए लेकर आया है और उन्हें उतना धूप में या उतनी गर्मी में उतना पैदल चलना पॉसिबल नहीं है, या किसी ऐसे पर्सन के साथ जिनके लिए लॉन्ग वॉकिंग बहुत डिफिकल्ट है, तब एक रैम्प, एक गोल्फ कार्ट, एक क्लोजर पार्किंग, ये सिर्फ फैसिलिटी नहीं होती, इट बिकम्स फ्रीडम। और मुझे ऐसा लगता है कि कतर जैसे मल्टी कल्चरल कंट्री में इंक्लूजन का मतलब ना एग्जैक्टली यही है, आप आए और आपको लगे कि ये प्लेस आपके लिए ही बना है। सो टुडेज क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट, कतर में आपको कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा थॉटफुली डिजाइन लगती है? बाय द वे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो सारी ही जगह बहुत थॉटफुली डिजाइन लगती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत खूबसूरत और आसान है। आप मुझे बताइए 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

वाओ, हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सो कतर समर का एक क्लासिक डायलॉग है, वीकेंड पे बाहर चले, चलो कहाँ बाहर, टेम्परेचर कैंसिल भाई। सो आज लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कतर में समर वीकेंड का मतलब एसी प्लस सोफा प्लस फोन ही नहीं है। यू कैन गो फॉर बॉलिंग, इंडोर एंटरटेनमेंट एरेना, आइस स्केटिंग है, सिनेमा है, गेमिंग है, म्यूजियम है, या सिंपली किसी अच्छे से कैफे में बैठकर आप लोगों को देख सकते हैं अपनी बढ़िया सी कॉफी के साथ। और मुझे लगता है कि इंडोर प्लान्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है आप रेडी होते हो, मस्त परफ्यूम लगाते हो और डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते मेकअप मेल्ट हो जाता है। सो लेट्स प्ले। आपको सिर्फ एक चीज चूज करनी है, या तो आप बॉलिंग के लिए जाओगे, या मूवी के लिए, या आइस स्केटिंग के लिए, गेमिंग, या फिर कैफे हॉपिंग। व्हाट्स योर वीकेंड प्लान, मतलब आपको क्या सबसे ज्यादा बेटर लगता है। बाय द वे, इस बार तो कतर में इतनी सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें आप बच्चों को लेकर जा सकते हो, उन्हें इंजॉय करवा सकते हो, और सब कुछ इनडोर है, मतलब यू कैन डू एनीथिंग इतने टेम्परेचर में भी। यू टेल मी कि आपने इस गर्मी में क्या एक्सप्लोर किया है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

की एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

देखो भाई, कतर का समर और हमारा रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम कहते हैं कि आई हेट दिस हीट, फिर एसी रूम में बैठकर चलो बीच चलते हैं ये भी कह देते हैं। कतर जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका रीसेंट फोरकास्ट के अकॉर्डिंग कंडीशंस हॉट टू वेरी हॉट हैं, विद टेम्परेचर्स अराउंड द मिड 40s इन दोहा। मतलब आई वॉज थिंकिंग कि 44-45 वाले टेम्परेचर में भी हम यहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं, और इस वेदर में सर्वाइवल के अपने अपने फॉर्मूले हैं। किसी के लिए एसी एट 14, किसी के लिए कोल्ड कॉफ़ी, किसी के लिए कड़क चाय, और किसी के लिए मॉल इज माई सेकेंड होम। बट ऑनेस्टली कतर की गर्मी हमें एक चीज़ सिखाती है, प्लानिंग मैटर करती है। आउटडोर प्लान्स टाइमिंग देख के, हाइड्रेशन बिल्कुल नहीं भूलना, लॉन्ग एक्सपोजर अवॉइड करना है जब ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है। और अब आप बताओ कतर समर में आपका सीक्रेट सर्वाइवल हैक क्या है? एक जेन्युइनली यूजफुल हैक तो शेयर करना बनता है बॉस, क्योंकि सबके पास होता है यार। मैं इतने सारे ब्लॉगर्स को देखती हूँ जो इतना ट्रैवल करते हैं, इतना इन्जॉय करते हैं। सो एसी रिमोट वाले हो आप, या फिर आपको लगता है नहीं यार इस मौसम में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर ऑफर। ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा, सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबूसिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबूसिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

कोई भी एक फूड रिलेटेड बात सुनते ही ना मेरा वीकेंड सडनली बेटर हो जाता है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल इज वन ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट फूड सेलिब्रेशन. सो जो 2026 एडिशन था वो उसमें बहुत सारे विजिटर्स आए. मतलब अगर मैं नंबर की बात करूं यहां पर 4,90,000 से ज्यादा विजिटर्स थे, 246 वेंडर्स थे और मोर देन 50 लोकल एंड इंटरनेशनल शेफ्स थे. सो यहां पर नेक्स्ट एडिशन को लेकर फूड लवर्स ना ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हैं. तो इवेंट जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि 2027 वाला जो एडिशन है वो लुसेल स्टेडियम में होने वाला है फ्रॉम 13th to 23rd January 2027 विद फ्री एंट्री. मतलब कोई भी आपको पास खरीदने की जरूरत नहीं है. मतलब अभी अगस्त है और हम जनवरी का खाना प्लान कर रहे हैं. दिस इज नॉट प्लानिंग, दिस इज कमिटमेंट. बट टेल मी ऑनेस्टली, फूड फेस्टिवल में आप क्या करते हो? एक स्टॉल देखते हो बस ये वाला लास्ट, या फिर नेक्स्ट स्टॉल जाते हो और फिर कुछ नया ट्राई करते हो? मुझे घर जाना है बट मेरे यू नो पैर नहीं चल रहे हैं. सो ऐसा ही होता था वहां पे जाके. मुझे लगता था बस एक चीज और ट्राई करनी है, बस एक डिश और ट्राई करेंगे. ऐसे करते करते मैं वहां पर जितने भी दिन गई हूं मैंने कुछ नया ट्राई किया. यू टेल मी योर स्टोरी जो कि फूड से रिलेटेड है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: नो ट्रैवल का प्लान सुनते ही ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, टिकट्स, चार्जर, पावर बैंक, ये इंपॉर्टेंट चीजें, और उसके बाद परफ्यूम. ऑब्वियसली मतलब गल्फ में परफ्यूम हर किसी का फेवरेट है. बट मेडिसिन, हाँ हाँ वो बैग में है. कतर्स मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिस मंथ की स्टार्टिंग में फॉर ट्रैवलर्स जो कैरी कर सकते हैं कंट्रोल्ड मेडिसिन फॉर पर्सनल यूज. द सिस्टम अलाउज ट्रैवलर्स अराइविंग और डिपार्टिंग जो टाइम होता है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको प्रायर परमिट मिल जाता है. यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन और आपको परमिट इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव हो जाता है. और ये ही एक चीज़ है ट्रैवलर्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाई एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज पहले आपको अपनी ट्रैवल डेट तो पता चल ही जाती है और आपको ये सब एप्लीकेशंस जो है वो प्रोसेस कर लेनी चाहिए. सो आई विल से प्लीज डोंट मेक यू नो दिस एयरपोर्ट पे देख लेंगे सिचुएशन, क्योंकि हॉलीडेज का सबसे बड़ा विलन जो है वो फ्लाइट डिले नहीं होता, मिसिंग पेपर वर्क होता है. इफ यू आर ट्रैवलिंग विद मेडिसिन, चेक द ऑफिशियल रिक्वायरमेंट और पहले से ही आप सारी चीजें तैयार कर लो. पासपोर्ट भी रेडी है, पेपर वर्क भी रेडी है, फिर कोई टेंशन नहीं है. यू कैन यू नो ट्रैवल बहुत आराम से और आपको कोई टेंशन नहीं होगा. बाय द वे ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कंट्री में चेंज होती रहती हैं, अच्छी अच्छी चीजें आती रहती हैं और मैं आपको बताती रहती हूँ. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड. थोड़ी देर में बात करेंगे ओनम और सद्या की. ये लंच नहीं पूरा इमोशनल एक्सपीरियंस है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको बताती हूँ थोड़ी देर में. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

सो भाई, हम इंडियंस के लिए ना खाना मतलब इमोशंस, और हर जगह एक डिफरेंट कल्चर है, हर जगह एक डिफरेंट खाना है, और उसे एक्सपीरियंस करना भी मतलब अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए सौभाग्य की बात है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीगन्स। सो बेसिकली 26 को ओनम है, पर अभी पूरे वीक और मैं तो कहूंगी पूरे 8-10 दिन से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ओनम का लंच जो है वो मिलना स्टार्ट हो गया। एंड ओनम का नाम आते एक चीज ऑटोमेटिकली याद आती है, विच इज सद्या। बनाना लीफ सामने है, उस पे राइस है, सांबर है, और इतनी सारी डिशेस जिसका नाम मुझे लेना भी नहीं आता, मतलब इतनी सारी करी होती है, पापड़म, बनाना चिप्स और न जाने क्या क्या। सो आई विल से मुझे पता है पायसम के बारे में, विच इज माई फेवरेट। सो पायसम एंटर लाइक द हीरो ऑफ द फिल्म, ठीक है। एंड हियर इज द ब्यूटिफुल थिंग, सद्या इज नॉट जस्ट अबाउट फूड, इट्स अबाउट कम्युनिटी, एवरी वन सिटिंग टूगेदर, डिफरेंट डिशेज, डिफरेंट फ्लेवर्स और वन बनाना लीफ। कतर में भी ओनम सेलिब्रेशंस और सद्या बुकिंग जो है वो अलग अलग जगहों पर स्टार्ट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मतलब आप अपने घर के बाहर निकलोगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर दिख जाएगा कि पूरे महीने यहां पे कितना कुछ चल रहा है। सो विद इट्स दोहा लोकेशन, आप कहीं पर भी जा सकते हो। एंड हियर इज माय सीरियस क्वेश्चन कि सद्या में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या लगता है? मतलब मुझे तो पायसम लगता है भाई। सो डिप्लोमेटिकली आंसर मत कीजिएगा, वी नीड द ट्रुथ। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ.
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.

मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को, मतलब आपको और मुझे मिलकर, एक रेडियो ऑलिव हैप्पी वीकेंड वॉच लिस्ट बना लेनी चाहिए जो कि OTT पर मिल जाए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स. भाई इस बार वीकेंड पर क्या वॉच किया जाए बड़ा कंफ्यूजन था. वीकेंड का सबसे बड़ा मॉडर्न प्रॉब्लम है नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, जियो हॉटस्टार है, Z5 है, यूट्यूब भी है, और फिर भी हम सोफे पर बैठकर बोलते हैं कि कुछ है ही नहीं देखने को. सो इस वीकेंड OTT पर आपने क्या बिंज वॉच किया है या फिर आप क्या देख रहे हो मुझे जरूर बताना. बाय द वे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आई है, मूवीज रिलीज हुई है, पर रिलीज होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा. सो आप मुझे बताइए कि आप इस वीकेंड पर क्या वॉच कर रहे हैं और हम दोनों मिलकर एक लिस्ट बनाते हैं, रेडियो ऑलिव हैप्पी वीकेंड वॉच लिस्ट. मैंने सोच लिया पर कोई स्पॉइलर नहीं, ना आप मुझे स्पॉइलर दोगे ना मैं आपको स्पॉइलर दूंगी. बस हम एक दूसरे को नाम बताएंगे और बताएंगे कि यार ये देख लो. सो यू टेल मी 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: Oh no, phir se school. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है।
3: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
3: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
4: कॉल 7022525।
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
3: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: तो बॉलीवुड में ना एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, कभी फिल्म थिएटर में आती है, ऑडियंस कम, बॉक्स ऑफिस पूरा डिसअपॉइंटिंग, और फिर इयर्स के बाद लोग डिस्कवर करते हैं कि यार गाने बहुत हिट हैं, डायलॉग्स वायरल हो रहे हैं, और सडनली अरे यार ये तो कल्ट फिल्म थी। एग्जैक्टली इसी कॉन्वर्सेशन में आज आवारापन का नाम आ रहा है। 2007 की आवारापन जो है वो बॉक्स ऑफिस पर मेजर सक्सेस बिल्कुल नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ फिल्म ने स्ट्रॉन्ग कल्ट फॉलोइंग डेवलप की, और अब 20 साल के बाद इमरान हाशमी इज बैक एज शिवम पंडित इन आवारापन 2, विच रिलीज्ड यू नो लास्ट वीक, मतलब 14th को ही रिलीज हो गई थी, और मैंने अभी तक नहीं देखी। एंड दिस टाइम नॉस्टैल्जिया जो है वो अपने आप में एक बढ़िया अट्रैक्शन बना हुआ है। इट्स लवली रिमाइंडर दैट समटाइम्स अ मूवी डजंट फेल, इट जस्ट अराइव्स बिफोर इट्स ऑडियंस इज रेडी। मतलब ऐसा ही हुआ था 2007 में, एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई किताब सालों बाद समझ आती है, कभी कोई गाना सालों बाद समझ आता है, कोई आदमी आपको ऐसा लगता है कि यार ये उस टाइम पर ऐसा गलत लग रहा था पर इसकी बात अभी सही लग रही है। सो मे बी टाइमिंग जो है वो सब कुछ है, इसीलिए मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आप मुझे बताइए जो पिछले हफ्ते आवारापन रिलीज हुई थी, आवारापन का मतलब टू पार्ट, वो आपने देखा या नहीं। बाय द वे मुझे तो फर्स्ट वाली भी याद नहीं है। सो ऐसी कौन सी बॉलीवुड मूवी है जिसका सीक्वल आप जेन्युइनली देखना चाहोगे, और प्लीज ठीक है कभी खुशी कभी गम दो बोलना मत, मतलब मुझे नहीं यू नो एक्सपेक्टेशंस उस मूवी से। सो आप मुझे बताइए 3311063 पर कि कौन सी मूवी आप भी देखना चाहेंगे सीक्वल में। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे कल रात को मिडनाइट लाउंज में विद लॉट ऑफ न्यू कॉन्वर्सेशंस, लॉट ऑफ न्यू यू नो डिस्कशंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, हैप्पी वीकेंड्स।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: Thursday. Club Olive. Club on radio.
1: 106.3 FM.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ऑलिव 106.3 FM यू आर लिसनिंग टू क्लब

0: hear this.
1: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

0: emotion है, drama है, tragedy है.
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz. 106.3 FM.